0: जा रह जाए सारे पांवों की ठोड़।
1: They're telling about life things.